0: ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ കൊച്ചി 90 FM. എന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം.
1: സംഗീത് കാ സഫർ.
2: बहनों और भाइयों नमस्कार. संगीत के सफर में इस एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हम आपको आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बरसात के दिनों का सफर आपको कराएगा. बारिश का महीना है और आज हम केरला में हैं. केरला में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और बारिश कभी कभार लगातार दिनों तक चलती है. तो इस बारिश के महीने में हम आपको बारिश के बारे में बताएंगे. और ये प्रोग्राम जो है ना, ये मनोरंजक ही नहीं बल्कि ये सूचनात्मक भी है. तो हमारी कोशिश ये है कि इस एपिसोड के द्वारा हम आपका मनोरंजन भी करें और आपको थोड़ा सूचना भी आपको दें. तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बरसात पसंद करने वाले को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? उन लोगों को प्लूवियोफाइल्स कहते हैं. और प्लूवियोफाइल्स वो होते हैं जो बारिश को बहुत पसंद करते हैं. बहनों और भाइयों, ये प्लूवियोफाइल्स जो है, ये इंग्लिश का शब्द है. इसे हमने खूब खोजा कि इसको हिंदी में क्या बताएं, लेकिन फ़िलहाल हिंदी में तो मुझे पता लगा नहीं कि इसको क्या कहें. तो फिलहाल हम इसको प्लूवियोफाइल्स ही कहते हैं, राइट? तो चलिए दोस्तों, प्लूवियोफाइल्स के बारे में बताने के पहले आपको ये गीत सुनाते हैं. और ये गीत हैं प्यार हुआ इकरार हुआ, फिल्म श्री 420, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मन्नडे. तो चलिए ये गीत सुनते हैं.

बहनों और भाइयों, यदि आप एक प्लूवियोफाइल है तो बारिश होने पर ना केवल आप खुश होते हैं, संभावना है कि आप बाकी समय भी अधिक कुशल व्यक्ति है। यहाँ हम 5 कारण बताएंगे आपको कि बारिश का आनंद लेने वाले लोग जीवन में अधिक खुश क्यों होते हैं। तो बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप एक प्लूवियोफाइल बने, बारिश का आनंद ले और बारिश होने पर आप खुश होए। तो अब सुनते हैं ये गीत, एक लड़की भीगी भागी सी, और ये है फिल्म चलती का नाम गाड़ी। संगीतकार SD बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, और इसे गाया है किशोर कुमार।

दोस्तों, अब हम चलते हैं प्लूवियोफाइल्स खुश क्यों रहते हैं, इसका कारण। पहला कारण, वे जीवन पूरी तरह से अनुभव करने के लिए अपनी इंद्रियों को ट्यून करते हैं। दोस्तों, क्या आप ये कर सकते हैं? ये बहुत एक बड़ी अच्छी बात है, अपने इंद्रियों को ट्यून करना जीवन के अनुसार। बारिश से प्यार करने वाले लोग अपने अनुभवों का आनंद लेते हैं, वे विशद विवरण में बारिश की वर्णन कर सकते हैं। प्लूवियोफाइल्स एक ताजा तूफान की गंध और उनके त्वचा में पानी टपकने की स्वादिष्ट अनुभव की सराहना करते हैं। वे ताजी बूंदों के स्वाद भी जानते हैं, क्योंकि वे ऊपर की ओर हाथ फैलाकर देखते हैं और बादलों से शीतल पेय का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वो बारिश से डरते नहीं हैं, वो बारिश का स्वागत करते हैं और वो पूरी तरह से खुश रहते हैं। अब सुनते हैं ये गाना, रिमझिम गिरे सावन, फिल्म मंजिल, संगीतकार SD बर्मन, गीतकार योगेश, और इसे गाया है किशोर कुमार।

दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे कारण जो पीलियोफाइल्स खुश क्यों रहते हैं। वे पल में रहते हैं। जी हाँ, इसका मतलब आप समझते हैं। प्लूवियोफाइल्स जो है वो पल में रहते हैं। आपको एक बात बताएं, एक हैप्पीनेस रिसर्चर था जिनका नाम था डॉक्टर मैट क्लिनिक्सवर्थ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रैक योर हैप्पीनेस नामक एक स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल किया। और इन्होंने इस्तेमाल क्यों किया? ये इन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोगों को वास्तविक समय में विशिष्ट गतिविधियों के दौरान उनकी खुशी का स्तर की रिपोर्ट मिल सके। पता है उन्होंने ये ट्रैक करने के बाद उन्होंने क्या पाया? उन्होंने जो पाया वह यह था कि खुशी और जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित होना के बीच एक सीधा संबंध है। जी हाँ, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आप पूरी तरह उपस्थित हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस पल में खो जाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? तो बहनों और भाइयों, प्लूवियोफाइल्स जो है वो जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, और इसी के कारण आप देखते हैं कि वो अधिकतर खुश रहते हैं, राइट? तो अब इस सूचना के बाद हम चलते हैं इस गाने पर, डम डम डिगा डिगा, और ये फिल्म है छलिया। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार कमार जलालाबादी, और इसे गाया है मुकेश की आवाज। तो चलिए बहनों और भाइयों, ये गीत

0: दोस्तों, तो अब चलते हैं तीसरा कारण, प्लूवियोफाइल्स खुश क्यों होते हैं। दोस्तों, ये देखा गया है कि प्लूवियोफाइल्स जो है वो अपने आप में अधिक अस्वस्थ हैं। बहनों और भाइयों, जी हाँ, बारिश से प्यार करने वाले लोग वास्तव में इस पर गर्व करते हैं, वे मस्त हैं। यहाँ तक कि अगर एक प्लूवियोफाइल के बाल गीले हो जाते हैं और उनका मेकअप चल रहा हो, वह इस बात पर बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, वो भी सोचते हैं कि अगर उनका बाल गीला हो या मेकअप भी बह रहा हो, फिर भी वो अच्छे लगते हैं। तो ये उनका सोच है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस गाने पे, जो है सजना बरखा बहार आई, और ये फिल्म है परख, संगीतकार सलील चौधरी, गीतकार शैलेंद्र, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।
1: ओ, सजना

जनाब दोस्तों, अब चलते हैं चौथा कारण, प्लूवियोफाइल्स खुश क्यों हैं। वे कठिन समय के दौरान अधिक लचीले होते हैं। जी हाँ, जब जीवन में चीजें थोड़ी खराब हो जाती है, सबके जीवन में ये अवसर होता है, कभी ना कभी जीवन में कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, तो वे वो लोग हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि ये भी बीत जाएगी, राइट। वास्तव में वे जानते हैं कि सर्वोत्तम अवसरों को लाभ उठाने के लिए चुनौतियाँ बहुत ही आवश्यक है। आपको इंद्रधनुष जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास भी बारिश ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कठिन समय आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और आगे बढ़ें। और ये सीख हम प्लूवियोफाइल से ले सकते हैं। अब चलते हैं इस गाने पे, सावन के झूले पड़े। फिल्म है जुर्माना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन और इसे गाया है लता मंगेशकर।

दोस्तों, अब हम चलते हैं पांचवा कारण पीडियोफाइल्स के खुशी का। उन्हें अपने स्वयं की मृत्यु डर की गहरी समझ है। जबकि वे बारिश के बूंदों के बीच नाचते और हर बारिश गीत गाते हुए आनंद लेते हैं, वह सोच सकते हैं बारिश प्रेमी भी गहरी से आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। एक तूफानी दिन जीवन पर चिंतित करने का सही अवसर प्रदान करता है। जब वे तेजी से बढ़ते बादलों और पेड़ों से गिरते गीले पत्ते को देखते हैं, तो वे अपने बीतते दिनों की बारे में सोचते हैं। वर्ष प्रेमी अभिव्यक्ति से सही अर्थ से जानते हैं और वे ये भी जानते हैं आप केवल एक ही बार जीते हैं। तो इस महत्वपूर्ण बात से हम हमारा सातवां गीत सुनते हैं। इसे गाया है लता मंगेशकर।

तो बहनों और भाइयों, अब हमें जाने का समय आ गया है और उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसके बारे में हमें लिखें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो।